0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Sign check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanako 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: ได้ทานลงขันรังเขาเขาใจใส่ปาดิ
1: युचार पर्व में यूरोपेंस प्रस्तुत करता है रंगीन से घर बरसीम से उपहार रुपताश हजार को यूरोपेंस को खरीद वापस होस लकी ड्रॉ कूपन अन्य पाउंड होस तीन बच्चों एसी एक चार डबल डोर सीड इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक अन्य बम्पर प्राइस में पाउंड होस एक जोड़ी कुलाड़ी बाली टूर यूरोपेंस घर मात्र ही रंगाउन होस सपना बने
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय में लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का संदर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साइन चेक सोलु एफएम इन स्टुडियो टाइम
2: इट्स 9 AM बिहान 9 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: 还有话就你说路 FM 不烦的
1: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: सांचे सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
3: स्नैपिन एम बिहान को 11 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
4: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाई अहिले सुन्नु भएको छ सुनु एफएम सुनु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुञ्जाङ ओखलढुंगा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842803000।

0: निमंत्रणा कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 83 गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्यता र माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
1: कार्यक्रम 83 गते शनिबार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाड़ी भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति।

0: 彩花就你所路 FM
1: सोनू FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोनू FM स्टूडियो टाइम
3: 3 PM न्यूज को 3 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू
4: साना तीना कुरा मानी खोजना उन्ना

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उपभोक्ता को मिलन सूचना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842880300

0: ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಮಂತ್ರಣ. कृषि प्रदेश सरकार द्वारा 80 दिन गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्यता माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं.
1: कार्यक्रम असोज 3 गते शनिबार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाड़ी भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने. झाँकी प्रदर्शनी, खेल कौशल, प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण.
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति.

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरीढुंगा को मिलन चेकमा
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङको डिक्टेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजान उखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842880300

0: एक निमंत्रण कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 83 गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम ठाकुर को प्रमुख आतिथ्य र माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
1: कार्यक्रम 83 गते शनिबार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाड़ी भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति।

0: ಸಂಯಮ ಪ್ರಣ कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 83 गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्य था माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
1: कार्यक्रम 83 गते शनिवार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाडि भेला भएर विनोद प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति

0: ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಮಂತ್ರಣ. कृषि प्रदेश सरकार द्वारा 80 दिन गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्य था माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं.
1: कार्यक्रम असोज 3 गते शनिबार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाड़ी भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू